0: चल गए रहा
1: क्या बोले
0: चल गए चल गए
1: क्या
0: चल गए
2: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.